मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

0: सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: नमस्कार, मी अर्चना शिवानी, आपण ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।

डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

अबाश जली को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

बगले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे, लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना, लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्या समझे? नहीं समझे?

0: अगन अगन गाम ही फुटला अग गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट गाम ही फुटला अंगा लाया सुटला एक थरथराट
1: तुमची एवढी आराधना केली तरी तुमचा योग अवतार
2: रो मत गंगू ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। आई हेट टीयर्स गंगू इन आंसुओं को पोछ दो ये बहुत कीमती है रे।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. My name is Anthony Gonsalves.
1: Really?
0: Right, right.

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
1: ओह माय।

0: ली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट
1: मैं दुनिया